ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Whoever has your name in his heart has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Vishwa Patrika
2: World Magazine
3: Pure Energy
1: Filling that void on your drive time Presenting the perfect combination that you so need at this time of the day
2: Thank you
1: Good information from agriculture to AI A journey around the globe of progressive music
4: I love you
1: And to be in the company of the most beautiful people on the planet.
2: Vishwapatrika is your checkpoint.
1: Creating that mode of togetherness, Vishwapatrika with me, Keshav Maharaj. Mondays and Thursdays, 4:10 to 5 p.m. on the official voice of the Hindu community in Trinidad and Tobago. Radio Jagriti 102.7 FM, a new awakening. Join me, won't you? Sitaram.
5: Bringing you the hits of the past on Radio Jagriti 102.7 FM.

0: only on Radio Jagriti 102.7 FM, Sitaram.
1: प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
2: And my friends looking for unbeatable bargains and authentic Indian vibes Fab India Expo in Chuanas is your spot. Step into Fab India and discover a world of colors, flavors, and fun.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Sitaram, you are invited to listen to Radio and TV Jagriti's community news segment aired every weekday at 10 a.m. and 3 p.m. To have your yagna or event featured, you can contact us at 663-2250, 663-8743 or email us at jagritinews@gmail.com.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: One place, countless options. That's Fabinia Expo in Chuguanas. Bridal and groom's wear, jewelry, furniture, footwear, home deco, and so much more. Opening daily 11 AM to 9 PM.

0: रेडियो जागृति।
1: आए भवन नहीं आए, भवन नहीं आए, भवन नहीं आए।
2: रेडियो जागृति।

यत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः हरि ओं मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयतेन्द्रियं यत्कृपातं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।